0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: दस बज के चार मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त है। मैं सुषमिता आप सबके साथ 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक वो सुन रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। कार्यक्रम का पहला गीत आप सबके लिए आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज में, सुनते रहिए साथ रहिए।
2: हार गई अपनी आंखें बंद करो संजना, बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

बजे 10 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त। और सबसे पहले जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये कि आज का दिन बेहद सुहाना रहने वाला है क्योंकि बारिश तो होने वाली है। अब बारिश का मौसम है, बारिश तो रहेगी ही। और जो है अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और जो है अपनी छतरी, अपना रेनकोट अपने साथ लेकर निकलें। चूंकि मौसम इतना सुहाना है तो गाने भी तो सुहाने सुहाने बजने चाहिए। तो अगला गीत जो है बिल्कुल तैयार आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए। मैं श्रुति स्मिता आप सबके साथ 107.9 FM रेनबो, दिल से दिल तक पर।

बहुत स्वागत है आप सबका इस बार फिर कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में। सुजिश्विता आप सबके साथ 10:17 स्टूडियो की घड़ी में वक्त और कार्यक्रम गपशप नॉन स्टॉप गपशप में और बातें हो रही हैं मेरी और आपकी। मौसम है बारिश वाला और साथ में अगर आप तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए तो बात अलग है, और अगर आपके हाथ में है चाय का प्याला तो बात कुछ और है। अब आप किस मूड में हैं ये तो आप ही को पता है, लेकिन कोई भी मूड हो, गाने तो हमेशा जो है साथ में होने ही चाहिए, क्योंकि गाने जो है हमारी हर मूड को जो है बेहतरीन फैला देती हैं, थोड़ा सा लाइट कर देती हैं, थोड़ा सा खुशनुमा बना देती हैं। और ऐसे में अगला गीत बिल्कुल तैयार आप सब लिए। सुन रही है साथ रही है 107.9 FM ट्रेन बोल दिल से दिल तक। मैं सुजिश्मिता आप सबके साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं आप नॉन स्टॉप गपशप।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: हमारी बातें अधूरी होंगी ना कहानी अधूरी होगी। कहानी क्योंकि कहानी तो हमारी गीतों के साथ शुरू होती है, गीतों के साथ खत्म होती है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप नॉन स्टॉप गपशप, और वक्त है अब नानी दादी के नुस्खों का, यानी कि एक चुटकी नुस्खे।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर। एक चुटकी नुस्खे।
0: अब बारिश का मौसम है तो सर्दी जुकाम और पेट में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। ऐसे में जो है हम कई असरदार नुस्खे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप अभी इस मौसम में कहीं चाय पीने का सोच रहे हैं तो जो है जब आप चाय पिए तो उसमें अदरक, लौंग, काली मिर्च और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दें। अगर हो सके तो उसमें तुलसी के पत्ते भी उबाल कर इस चाय को बनाएं। ये कड़क चाय जो है आपके गले को आराम देगी, आपके मौसमी इन्फेक्शन, वायरल बुखार या सर्दी खांसी से बचाएगी। इसके अलावा अगर आप इस मौसम में अजवाइन का पानी लेते हैं तो ये भी आपके पाचन तंत्र को जो है आराम पहुंचाता है। इस मौसम में पाचन तंत्र थोड़ा सा धीमा हो जाता है और रोज़ रात को अगर आप आधा चम्मच अजवाइन को लेकर गिलास पानी में उबालें और गुनगुने पानी को पिए तो इस मौसम में होने वाली पेट के जो है समस्या थोड़ी सी दूर होगी, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी और इन्फेक्शन की कमी होगी। मान लीजिए आप ऑफिस से लौट रहे हैं या फिर किसी भी काम से घर से बाहर है और बारिश में भीग गए तो घर आए तुरंत जो है साफ पानी से नहाए और रात को सोने वक्त थोड़ा सा एक गिलास गुनगुना दूध, गर्म दूध लें और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर उसे पी जाए। ऐसे में जो है ये हल्दी जो है एंटी बैक्टीरियल गुण है इसमें और शरीर के तापमान को बनाए रखता है और आपको सर्दी जुकाम से जो है बचाने में भी जो है मदद करता है।

चुटकी नुस्खे। थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मंगेशकर, उदित नारायण की आवाज में सुना अपना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से इस गीत को। और जो है अभी जो है आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप पे शुचिश्मिता आप सबके साथ 10:46 स्टूडियो की घड़ी में वक्त। और दोस्तों, लोग कहते हैं मैं बोलती बहुत हूँ, लेकिन अगर दोस्त ही ना हो, अगर आप ही ना हो, तो ये महफिल कैसे सजे और कहाँ मैं बोलूँ, है ना। तो बातों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे और ढेर सारी बातें आपसे नॉन स्टॉप गपशप कार्यक्रम में मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ।

अच्छा दोस्तों, पता है कि आज के दिन यानी कि आज के दिन वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने जो है 17,000 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आज के दिन 2010 में इंडिया के प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 17,000 रन पूरे किए थे और एक रिकॉर्ड बनाया था। आज के दिन अगर प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म की बात करें तो सुंदर सिंह, प्रसिद्ध भारतीय धर्म प्रचारक, मेसी का भी आज के दिन, विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर का आज के दिन, विश्व कप विजेता मेसी का जन्म हुआ आज के दिन। इसके अलावा अगर बात करें तो आज के दिन कई घटनाएं इतिहास में घटी हैं जो कि अपने आप को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा चुकी हैं। 1932 में आज के दिन थाईलैंड में रक्तहीन क्रांति के बाद संवैधानिक शासन की शुरुआत हुई थी। ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो आज के दिन इतिहास के पन्नों में अपने आप को दर्ज करा चुकी हैं। अब जब तेंदुलकर की बात हुई तो एक और क्रिकेट प्लेयर के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को कल यानी कल जो है द्रौपदी मुर्मू से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है पद्मश्री सम्मान मिला।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28

0: जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: साथ की आवाज में आखिरी गीत के साथ छोड़ जाऊंगी मैं, आप सबको सुनते रहिए, साथ रहिए, नॉन स्टॉप कब्सेप्शन रहते आप 107.9 FM रेनबो, दिल से दिल तक पर।

3:04 है स्टूडियो की घड़ी का समय और फिर एक बार आपकी रेडियो दोस्त हाजिर हो चुकी है आप सबके मनोरंजन के लिए। नाम है मेरा शर्मिष्ठा और चलिए लेकर हाजिर हो चुकी है आपकी रेडियो दोस्त इस वक्त का कार्यक्रम जिसका नाम है तीन का तड़का, जिसमें मैं और आप मिलकर लगाते हैं तड़का कुछ बातों का तो कुछ गीतों का। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 107 FM रेनबो। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे इस प्रसारण को इस वक्त आप सुन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस म्यूजिकल जर्नी की।

3:10 है स्टूडियो की घड़ी का समय और हम और आप जब मिलते हैं तब क्या होता है। जी हाँ, तब हमारे प्यार की जो क्वालिटी है, प्यार की जो गुणवत्ता है, वो वाकई में 100% हो जाती है। और ये ज़ोरदार प्यार को लेकर हम गुजार सकते हैं पूरा एक दिन। जी हाँ, तो चलिए ज़ोरदार प्यार हमारे बीच यूं ही बरकरार रहे। और फिलहाल तो चल रहा है कार्यक्रम 3 का तड़का, जिसमें हम जनरली बात करते हैं उन फिल्मों को लेकर, उन चीज़ों को लेकर जो कि जुड़ी होती हैं बॉलीवुड की दुनिया के साथ। तो चलिए आने वाली फिल्मों के बारे में बात करें, तो सबसे पहले वेलकम टू द जंगल इस फिल्म को लेकर करते हैं कुछ गपशप। तो ये जो फिल्म है जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल, में अमृता फडणवीस ने जो है 4 चांद लगा दिए हैं। और 4 चांद आखिर किस चीज़ का के बारे में लगाया हुआ है ये भी तो मैं आपको बताऊं। जी हाँ, उस फिल्म में एक गाना है दीवाने हैं। जी हाँ, दीवाने हैं। गाने में अक्षय रवीना का वही पुराना जादू फिर एक बार झलक रहा है। फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया और मज़ेदार गाना दीवाने हैं रिलीज हो चुका है, और जिसमें अक्षय कुमार और रवीना की जोड़ी को देखकर लोग वही पुराने वाले प्यार को फिर एक बार

तलाश रहे हैं। अब फिल्म जो है बहुत जल्द आ रही है और जी हाँ, वही वाला प्यार फिर एक बार तलाश रहे हैं दर्शक, और मन ही मन ये भी आशा कर रहे हैं कि वही वाला प्यार जिसे हम 90s में देखा करते थे इन दोनों जोड़ी के बीच में, वही वाला प्यार शायद हमें फिर से एक बार दिखाई दे। तो इस फिल्म में रवीना और अक्षय को देखकर लोग उनके उन दिनों के प्यार को फिर से याद कर रहे हैं जब दोनों के अफेयर के किस्से खूब चला करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार और रवीना टंडन का अफेयर 90 के दशक का सबसे चर्चित रोमांस था और दोनों फिल्म मोहरा के दौरान एक दूसरे के करीब आ चुके थे। 90 के दशक में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और जानी मानी जोड़ियों में से एक थी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, जिसमें अक्षय का एक्शन और रवीना का ग्लैमर एक साथ मिलकर क्या ही कमाल करते थे, दर्शकों के दिलों पर राज किया है इस जोड़ी ने। इस जोड़ी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें मोहरा, खिलाड़ी का खिलाड़ी और दावा जैसी फिल्में शामिल हैं। तो चलिए, जब बात हो रही है खूबसूरत जोड़ी को लेकर, तो आशा तो यही की जाती है कि आने वाली ये जो फिल्म है इसमें भी ये जोड़ी कुछ ना कुछ कमाल तो करके ही दिखाएगी। तो फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए, संग है आप, आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा के, और चल रहा है दोपहर का कार्यक्रम जिसका नाम है 3 का तड़का।

0: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति।
1: तीन बजकर 20 मिनट स्टूडियो की घड़ी का समय एफएम रेनबो परियोजना प्रस्तुति में फिर एक बार आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं लेकर एक नई योजना। आज की योजना है प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी स्कीम। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि आर्थिक तंगी भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सके। ये योजना सरल, पारदर्शी, छात्र अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी गिरवी या फिर गारंटी के शिक्षा ऋण प्रदान करती है, जिसमें 8 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को 3% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। पात्र होने के लिए आवेदक को भारत में नामित 900 के करीब गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में से किसी एक में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करना होगा। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। ये योजना उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी मेधावी छात्र वित्तीय तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। आवश्यक दस्तावेजों की अगर बात करें तो KYC से जुड़ा हुआ आधार, पैन, पता प्रमाण के अलावा पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड और संस्थान से प्रवेश या फिर शुल्क का प्रमाण आवश्यक होगा।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: FM रेनबो परियोजना प्रस्तुति आज यहीं तक बात कर रहे थे प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी स्कीम को लेकर। कल फिर एक बार इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा हाजिर हो जाएंगे लेकर परियोजना प्रस्तुति, बात होगी एक नई योजना को लेकर। फिलहाल रुख करते हैं कार्यक्रम 3 का तड़का, जिसे आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो चैनल पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसार

0: इस वक्त आप सुन पा रहे हैं।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरोसेवन एफएम रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरोसेवन एफएम रेनबो पर।

3:27 आपसे बस थोड़ी ही देर में दिन का तड़का कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम जिसका समय रहेगा 3:30। और उस तरफ रुख करें उससे पहले एक बढ़िया सी वेब सीरीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगी जिसमें एक पिता के संघर्ष और प्यार को भरपूर तरीके से दिखाया गया है और उस वेब सीरीज़ का नाम है समर्पित, जिसमें एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर गुजरता है इसकी कहानी उस सीरीज में दिखाई गई है। और अगर लीड रोल के बारे में बात करें तो अंकित यादव और जया भट्टाचार्य के बेहतरीन अभिनय को आप उस सीरीज में देख पाएंगे। ये एक बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो एक पिता के अपने बच्चों के प्रति बिना किसी शर्त के प्यार त्याग और उनके भविष्य को संवारने के लिए एक किए गए संघर्ष को बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही है। और इस सीरीज़ को आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख पा सकते हैं। तो चलिए कुछ अलग कुछ हटके अगर आप देखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आप देख सकते हैं। और इस तरह की जो फिल्में होती हैं, जो सीरीज़ होती हैं, वो वाकई में कुछ हटके होती हैं, कुछ अलग होती हैं। और सच्चाई को बयां करने वाली ये जो कहानियाँ होती हैं, वाकई में इन्हें देख कर कहीं ना कहीं दिल में एक अलग छाप छोड़कर रह जाती हैं ये फिल्में या फिर ये सीरीज़ जो भी है। मतलब मैं बेसिकली इन फिल्मों के पीछे की कहानी की मैं बात कर रही हूँ कि असली ज़िंदगी में हम कई बार इन चीज़ों को महसूस नहीं करते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को, जी हाँ, इन्हीं असली चीज़ों को जब हम फिल्मों के माध्यम से देखते हैं तब वाकई में हमें ये पता चलता है कि हमारे जो घर में रहने वाले वहीं हमारे लिए कितना कुछ कर गुजरते हैं। तो फिलहाल 3 का तड़का आज यहीं तक। अब समय हो रहा है 3:30, यानी कि आपके लिए हम लेकर आते हैं प्रायोजित कार्यक्रम

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम

करम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओ, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओ, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओ, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओ, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओ, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओ, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गई। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसाकर के भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओ, यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओ, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405

0: 559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का यह सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक

0: में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूं कि मुझे अपने शोध पत्र को

0: देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
1: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
1: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
1: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
1: जी,
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है।

0: बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते।
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: मन की बात है, जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

7:11 है, छोड़ी की घड़ी का समय 107 FM रेनबो पर दोबारा शर्मिशा हाजिर हो चुकी है आप सबके मनोरंजन के लिए। और इस बार लेकर आई है कार्यक्रम कुछ अलग कुछ खास। जी हाँ, समय हो रहा है कार्यक्रम सुनने का जिसका नाम है छह लोग। और बुधवार की शाम तो हम लेकर ही आते हैं आपके लिए कुछ खास कुछ अलग। जी हाँ, बुधवार की शाम छह लोग के अंतर्गत हम बात करते हैं हम साथ साथ। जी हाँ, ये विषय होता है और हम साथ साथ में कुछ जाने माने जोड़ियों को लेकर हम बात करते हैं जो कि जाहिर सी बात है जुड़े होते हैं बॉलीवुड की दुनिया के साथ। और आज भी बातें होंगी कुछ खास। जी हाँ, लेकिन आज बात करूँगी किन के बारे में। जी हाँ, दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं और दोनों सेगमेंट में बात होगी अलग अलग स्टार्स को लेकर। और सबसे पहला जो सेगमेंट है यानी कि 7 से लेकर 8 बजे तक का जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें हम बात करेंगे जी हाँ बॉलीवुड के जाने माने खिलाड़ी को लेकर, यानी कि खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार को लेकर बात होगी। वैसे तो हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार ने अनगिनत अभिनेत्रियों के साथ बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जितने भी अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया हर जोड़ी कामयाब रही या फिर हर जोड़ी सफल रही हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। लेकिन अधिकतर, जी हाँ, अधिकतर अभिनेत्रियों के साथ अक्षय कुमार की जोड़ी जो है वो सुपर डुपर हिट रही है। तो आज के इस कार्यक्रम में यानी कि हम साथ साथ में सबसे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार के साथ बेहतरीन जोड़ी यानी कि उन अभिनेत्रियों के बारे में बात आज के इस कार्यक्रम में मैं करूंगी जो कि अक्षय कुमार और बेहतरीन अभिनेत्रियों की जोड़ी बनकर हमारे सामने आई है। तो चलिए, जब इस जोड़ी को लेकर बात हो ही रही है तो अक्षय कुमार के साथ हम बात करेंगे अलग अलग अभिनेत्रियों को लेकर। और फिलहाल तो बिपाशा बसु को लेकर ही मैं बात करूं कि बिपाशा बसु के साथ अक्षय कुमार की जो केमिस्ट्री है, जो जोड़ी है, उसे भी काफ़ी कामयाब जोड़ियों में से एक माना गया। और फिलहाल अजनबी फिल्म से सुनवाऊंगी आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत। और फिल्म अजनबी में अक्षय कुमार के साथ बिपाशा बसु की जो जोड़ी है उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। और ये जो फिल्म है अजनबी, इसे भी, इसकी कहानी को भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। कहानी के साथ साथ फिल्म के हर गाने हिट रहे थे। तो चलिए, बात होगी अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ बॉलीवुड के जाने माने खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार की जोड़ी को लेकर हम कर रहे हैं बात। और फिलहाल आपको सुनवाऊं अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

अनु मलिक के संगीत से सजा ये धमाकेदार आप गीत सुन रहे थे, जिसमें बोल थे समीर के। अदनान सामी सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म अजनबी से सुना आपने ये गीत। और फिलहाल 7:19 है स्टूडियो की घड़ी का समय। संग है आप शर्मिशा की, सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है छायालोक। और बुधवार की शाम है तो छायालोक के अंतर्गत हम बात करते हैं विषय हम साथ साथ को लेकर। और आज के इस कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में, जी हाँ, खिलाड़ी कुमार को लेकर बात हो रही है और खिलाड़ी कुमार के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों की केमिस्ट्री को लेकर हम बात कर रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार ने अपने 3 दशक से भी लंबे करियर में कई दिग्गज और नई अभिनेत्रियों के साथ काम किया। ऑन स्क्रीन बेहतरीन केमिस्ट्री से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनकी जर्नी जो है वो कुछ ज़्यादा ही रंगीन रही। तो चलिए इस वक्त बात कर लेते हैं अक्षय कुमार के साथ रवीना टंडन की जोड़ी को लेकर। 90 के दशक में अक्षय कुमार और रवीना की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट

दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही। प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो मोहरा के अलावा खिलाड़ियों का खिलाड़ी के साथ पुलिस फोर्स, इन फिल्मों में इस जोड़ी ने कुछ खास ही कमाल कर दिया था।

अक्षय और रवीना की सुपरहिट जोड़ी को लेकर जब बात हो ही रही है तो चलिए लगे हाथों नए नवेले गाने को लेकर भी आपको कुछ बताऊं। जी हाँ, अमृता फडणवीस से जुड़े एक नए गाने को लेकर दर्शकों के दिल में एक खास जगह बन रही है और इसके पीछे का कारण यही है कि इस गाने में दोबारा कई सालों के बाद ये जोड़ी फिर से नज़र आ रही है और फिल्म का नाम है वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, वेलकम टू द जंगल एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिर से ये जो सुपरहिट जोड़ी है अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी, इस जोड़ी को दोबारा देखा जा सकता है और जो दर्शक है वो फिर से उसी इंतज़ार में है कि 90s के दशक में इस जोड़ी ने जो सुपरहिट फिल्में दी थी हम सभी को, काश ऐसा ही कुछ जादू इस बार भी इस फिल्म के ज़रिए दर्शकों को देखने को मिले। तो भाई ये तो है लोगों की आशा। जी हाँ, लोगों की आशा अभिलाषा आखिर इस फिल्म से जुड़ी हुई है कि 90 के, जी हाँ 90 के दशक का वही प्यार क्या उन्हें इस बार भी इस फिल्म के ज़रिए देखने को मिलेगा। अब देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो खैर वक्त की बात है। जी हाँ, इंतज़ार करने के अलावा, जी हाँ इंतज़ार करने के अलावा करने को तो वैसे बहुत कुछ है ना, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं सुपरहिट जोड़ी को लेकर, यानी कि एक्शन हीरो अक्षय कुमार के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों को लेकर आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं और अक्षय कुमार की बात हो और एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो कि आज के इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। और इस वक्त आखिर किन की बात करूंगी? जी हाँ, अक्षय कुमार के साथ किसकी केमिस्ट्री की बात मैं करने वाली हूँ? तो चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं अभिनेत्री कैटरीना कैफ को लेकर। अक्षय कुमार ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि अपनी पसंदीदा हीरोइन के तौर पर वे कैटरीना कैफ को बताते हैं और दोनों ने एक साथ कई ब्लॉकबस्टर कॉमेडी और एक्शन फिल्में दी हैं। प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो नमस्ते लंदन, सिंह इज किंग और वेलकम के अलावा दीदनादन और 30 मरहम, ये सभी कॉमेडी एक्शन फिल्मों के तौर पर हमारे सामने आई और इन सारे फिल्मों में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। जी हाँ, जोड़ी तो सुपरहिट रही ही, साथ ही साथ फिल्म की कहानी, फिल्म के गीत, हर एंगल से इन फिल्मों को जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर दर्शकों की तरफ से दिए गए। तो चलिए भाई, भर भर के नंबर जब दिए जा रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटें? हम तो ये कर सकते हैं कि आपके लिए सुनवा सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। तो चलिए हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ में सुने ये गीत।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
2: सात बजकर 38 मिनट, संग आप शर्मिशा के सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ। और आज के इस कड़ी में, जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों की बेहतरीन जोड़ी को लेकर। अब अक्षय कुमार के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री की बात हो रही हो और शिल्पा शेट्टी की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की सुपर डुपर हिट जोड़ी आखिर किस लेवल तक हिट हुई थी, इसके बारे में तो अलग से बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम अक्षय कुमार के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों की सुपर डुपर हिट जोड़ी को लेकर बात कर रहे हैं, तो शिल्पा शेट्टी के साथ उनकी जोड़ी का कहना, यानी कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आखिर कितनी लाजवाब रही, इसके बारे में तो बात करना बनता है। 90 के दशक में दोनों के रोमांस के चर्चे काफ़ी आम थे। उन्होंने कुछ बेहतरीन एक्शन और म्यूजिकल फिल्मों में साथ काम किया और मेन फिल्मों की अगर बात करूं तो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, धड़कन के अलावा जानवर जैसे फिल्मों में उनके बेहतरीन केमिस्ट्री को हमने खूब पसंद किया, जी हाँ। और भले ही 90s के समय की बात हो रही हो, लेकिन आज भी उनके बेहतरीन फिल्मों को हम आज भी देखना उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, जी हाँ, वैसे तो 90 का दशक ही सही, लेकिन वही फिल्में, वही केमिस्ट्री, जी हाँ, आज भी लोगों को उतना ही ज़्यादा भाती है जितना कि उस

छायालोक के अंतर्गत होंगी बहुत सी बातें, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है एक सतर्क वार्ता, और सतर्क वार्ता के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटों के दौरान तेज़ हवा के साथ बारिश होने की संभावना भी बताई जा रही है, और तेज़ हवा की रफ्तार बताई जा रही है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकता है। तो मौसम विभाग की ओर से ये है एक सतर्क वार्ता। चलिए रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर। कार्यक्रम चल रहा है छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ। जब अक्षय कुमार के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों की बेस्ट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन की किस्से साझा कर रही हूँ, तो प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार की जोड़ी को लेकर बात ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो अक्षय कुमार जिस किसी भी अभिनेत्री के साथ उन्होंने स्क्रीन को शेयर किया, हर अभिनेत्री के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है, जी हाँ, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है वो बहुत ठीक ठाक नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट ही रही है। और एक फिल्म को कामयाब होने के पीछे तो कई सारी वजह होती है ना, सिर्फ और सिर्फ अभिनेता और अभिनेत्री ही नहीं बल्कि पीछे के जो साइड सीन होते हैं उनको लेकर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। इसके अलावा गाने तो है ही, अगर गाने ज़बरदस्त ना हो तो फिर भी फिल्म में जो है वो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं होता है। तो सब मिलाकर फिल्म जो है वो हिट बनती है। हाँ, तो चलिए फिलहाल प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार की सुपर डुपर हिट जोड़ी को लेकर कर लेते हैं बात। और ये जो जोड़ी है, यानी कि इस प्रियंका चोपड़ा अक्षय कुमार की केमिस्ट्री आखिर ठीक ठाक बैठी कि नहीं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अक्षय और प्रियंका की ऑन स्क्रीन जोड़ी बेहद ही बोल्ड और रोमांटिक मानी जाती थी। उनकी कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका ही मचा दिया था। और अगर मेन फिल्मों की बात करें तो ऐतराज़, मुझसे शादी करोगी के अलावा वक्त फिल्म में भी उनकी सुपर डुपर जोड़ी को हमने देखा है। और ऐसे में, जी हाँ, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों तरह की स्क्रीन को साझा करने वाली जोड़ी को लेकर भला कैसे ना करें हम बात, है ना। बात कर रही हूँ अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेहतरीन जोड़ी को लेकर। हालांकि इस जोड़ी ने काफ़ी कम फिल्में ही की हैं, लेकिन जितनी भी की हैं, जी हाँ, दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और ऑन स्क्रीन जोड़ी भले ही कम दिखी हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन जोड़ी जो है वो आज भी धमाका मचा रही है। और फिल्म मेला के दौरान अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी के लिए उन्हें प्रपोज किया था। दोनों ने 2001 में शादी के बंधन में दोनों बन चुके थे, और शादी के बाद ट्विंकल ने फिल्मों से दूरी बना ली और अब वे एक जाने माने लेखिका और स्तंभकार हैं। और साथ काम किया फिल्मों की अगर बात करें तो इंटरनेशनल खिलाड़ी के अलावा

बहुत ज़्यादा पटी, यानी कि ऑन स्क्रीन जोड़ी भी बेहद ही खूबसूरत रही। बात करूंगी इन्हें लेकर भी, लेकिन फिलहाल सुनवाऊँ आपको एक प्यारा सा गीत। आवाज़ उदित नारायण, अलका याग्निक।

अक्षय कुमार के साथ आयशा झुलका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की अगर बात करें तो अक्षय के करियर की शुरुआती फिल्मों में आयशा उनकी लीड एक्ट्रेस थी। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो खिलाड़ी के अलावा वक्त हमारा है और दिल की बाजी जैसे फिल्मों में इस जोड़ी ने कमाल कर दिया था। इसके अलावा विद्या बालन के साथ अक्षय कुमार की जोड़ी के बारे में आखिर किसे नहीं पता। एक शानदार अभिनेत्री जिनके साथ अक्षय कुमार ने कुछ लीक से हटकर और बेहतरीन ड्रामा फिल्में की हैं। प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो भूल भुलैया है, ये बेबी और मिशन मंगल जैसे फिल्मों में इस जोड़ी को हमने साथ काम करते देखा था। इसके अलावा ममता कुलकर्णी के साथ भी इनकी जोड़ी जो है वो बहुत ही कामयाब रही। इसके अलावा अक्षय कुमार की 2026 की प्रमुख फिल्मों में विद्या बालन और वामिका गब्बी जैसी अभिनेत्रियों के साथ भी नजर आ रहे हैं और कई सारी नई अभिनेत्रियों के साथ भी उनकी जोड़ी जो है वो ज़बरदस्त बैठ रही है। तो चलिए फिलहाल रुख करते हैं सेगमेंट के अगले और आखिरी गीत की ओर और उसके बाद 8 से 9 बात करेंगे एक और ख़ास जोड़ी को लेकर।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

8:10 मिनट है स्टूडियो घड़ी का समय और फिर एक बार शर्मिशा सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कर रही है। चल रहा है कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ और हम साथ साथ के अगले सेगमेंट की ओर हम पहुंच चुके हैं और बातें होंगी एक खास सुपरहिट जोड़ी को लेकर। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मौसम विभाग की ओर से दी जा रही एक सतर्क वार्ता को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाना चाहूंगी। बांकुड़ा, पुरुलिया, बर्धमान और बीरभूम के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बांकुड़ा, पुरुलिया, बर्धमान, बीरभूम में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की तीव्र संभावना दी जा रही है और हवा की रफ्तार बताया जा रहा है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकता है। ये तो थी मौसम विभाग की ओर से दी जा रही सतर्क वार्ता।

और छैलो के अगले सेगमेंट में सबसे पहला गीत जिसे आप सुन रहे थे, जी हाँ, फिल्म दिलवाले से सुनवाया आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत अरिजीत और अंतरा मित्रा की आवाज़ में। और इस पहले, जी हाँ, पहले पहले गीत को सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि अगले सेगमेंट में आखिर किस सुपरहिट जोड़ी को लेकर, किसी एक सुपरहिट जोड़ी की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बल्कि कौन से हीरो और किस हीरोइन को लेकर फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए, खैर अभी भी आप सर को खुजाते खुजाते ये सोच रहे हैं कि भाई अभी भी मामला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है और अभी भी जो है तस्वीर कुछ साफ साफ नहीं हो रही है। और इस वक्त भी अगर आप कहेंगे कि तस्वीर जो है वो साफ नहीं हुई है तो फिर क्या ही कहने। चलिए खैर कोई बात नहीं, बताती हूँ आपको, काजोल और शाहरुख खान के सुपरहिट फिल्म दिलवाले से सुन रहे थे आप सेगमेंट, जी हाँ, अगले सेगमेंट का पहला गीत, यानी कि किंग खान, यानी कि शाहरुख खान के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों ने स्क्रीन को शेयर किया है। जी हाँ, बॉलीवुड के पर्दे पर बहुत सी अभिनेत्रियाँ शाहरुख खान के साथ अभिनय करती हुई आपको दिखी होंगी। और आज के इस सेगमेंट में फ़िलहाल हम बात करेंगे शाहरुख खान के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों की आखिर ऑन स्क्रीन जोड़ी कैसी रही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काजोल के साथ शाहरुख की सुपर डुपर हिट जोड़ी को लेकर। वैसे तो इस जोड़ी को लेकर कुछ खास कहना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई है क्या कि इस जोड़ी के बारे में जिसे नहीं पता हो। और इस जोड़ी को लेकर अनगिनत फिल्में बनी हैं और कोई ना कोई फिल्म तो आपने ज़रूर से देखी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इन सारे फिल्मों में से किसी एक फिल्म को तो आपने अनगिनत बार देख लिया हो। जी हाँ, एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं इस जोड़ी ने मिलकर। तो काजोल और शाहरुख खान की बेहतरीन जोड़ी को लेकर हम कर रहे हैं बात, और इस जोड़ी को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन और जादुई जोड़ियों में से एक माना जाता है। दोनों ने एक साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो वाजिगर करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के अलावा कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान के अलावा दिलवाले जैसी बेहतरीन फिल्मों में हमने इस जोड़ी के सुपर डुपर हिट होते हुए देखा है। तो चलिए बात करूंगी और भी बेहतरीन अभिनेत्रियों के साथ किंग खान की शेयर की गई सिल्वर स्क्रीन को। तो फिलहाल क्यों ना बात करें दीपिका पादुकोण को लेकर। दीपिका पादुकोण के साथ शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम जो कि रिलीज़ हुई थी 2007 से, बॉलीवुड में अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। और अगर प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो ओम शांति ओम के अलावा चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में इस जोड़ी के कमाल के अभिनय को हम सब ने देखा था। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत जिसमें आवाज़ है सोनू निगम, श्रेया घोषाल की, सिर्फ और सिर्फ आप सभी सुनने वालों के लिए। सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ।

ओम शांति ओम फिल्म से सुन रहे थे आप इस बहुत ही प्यारे से गीत को सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। और फिलहाल समय हो चला है 8:20। संगे आप शर्मिशा के सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत हम साथ साथ। और इस वक्त शाहरुख खान के साथ एक ऐसी अभिनेत्री की जोड़ी को लेकर मैं बात करूंगी जिसे खुद फिल्म डायरेक्टर करण जौहर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और एक बार के लिए उनका तो मानना ही यही था कि शाहरुख और रानी मुखर्जी जिस फिल्म में साथ होंगे वो फिल्म हिट होनी ही होनी है। और इस विश्वास के साथ कई सारी फिल्में उन लोगों ने साथ बनाई। तो चलिए इस सुपर डुपर हिट जोड़ी को लेकर कर लेते हैं थोड़ी सी बात। रानी मुखर्जी और शाहरुख के सुपर डुपर जोड़ी ने हमें बहुत सारी फिल्में दी हैं। रानी मुखर्जी और शाहरुख ने 90 के दशक के अंत से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत तक कई आइकॉनिक फिल्मों में साथ काम किया है इस जोड़ी ने। और प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो कुछ कुछ होता है के बाद चलते चलते जो कि आई थी साल 2003 में, इसके अलावा साल 2004 में वीर ज़ारा, 2005 में पहेली, के अलावा कभी अलविदा ना कहना जो कि रिलीज़ हुई थी साल 2006 में। इन सारे फिल्मों में इस खूबसूरत जोड़ी यानी कि शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के बेस्ट जोड़ी कहा गया था। और बातें करेंगे और भी बहुत सी अभिनेत्रियों के साथ किंग खान की बेहतरीन केमिस्ट्री को लेकर, लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा नगमा आप सभी सुनने वालों के लिए। और आवाज़ है इस वक्त अभिजीत के साथ अलका याग्निक की आवाज़ में, सुनिए ये गीत।

8:28 और इस वक्त एक धमाकेदार गीत, जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक पहुंचने वाला है, जो कि एक जाने माने फिल्म से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि किंग खान के साथ अलग अलग अभिनेत्रियों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लेकर मैं बात कर रही थी, और ऐसे में एक ऐसे फिल्म के बारे में भी बात करूंगी और फिल्म के एक ख़ास गीत, ख़ास रोल को लेकर भी, ख़ास किरदार को लेकर भी मैं बात करना चाहूंगी। एक जानी मानी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान दिखाई दिए हैं दो अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ, और दो अभिनेत्रियां दो अलग रोल निभा रही हैं एक ही फिल्म में, और फिल्म का नाम दिल तो पागल है। जी हाँ, शाहरुख खान के साथ, माधुरी दीक्षित के साथ करिश्मा कपूर के बेहतरीन अभिनय को हमने देखा था इस फिल्म में, और हाल ही में करिश्मा कपूर ने अपने किरदार से जुड़ा हुआ एक राज, जी हाँ, राज ही कह सकते हैं, एक राज साझा किया है हम सभी सुनने वाले दर्शक हों या फिर जो भी उन्हें सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उन सभी लोगों तक उन्होंने एक राज की बात साझा की है। और वो ये है कि करिश्मा कपूर ने दिल तो पागल है को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है। करिश्मा उन्होंने बताया कि उस दौर में कोई भी बड़ी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के सामने निशा का रोल निभाने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे कि आप सभी को याद है कि दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर का जो रोल था, जो किरदार था, उसे निशा नाम दिया गया था। और उस समय में जब वो फिल्म बनने वाली थी, तैयार होने वाली थी, उस समय निशा का जो रोल था उसके लिए कोई भी अभिनेत्री तैयार नहीं हो रही थी, और उसके पीछे कारण यही था कि माधुरी दीक्षित के अगेंस्ट उन्हें काम करना पड़ता, और यही सोचकर कई सारी अभिनेत्रियों ने निशा का रोल निभाने से मना कर दिया था। हर कोई माधुरी के साथ स्क्रीन शेयर करने और उनके साथ डांस फेस ऑफ करने से हिचकिचा रही थी, परेशान हो रही थी, और इस वजह से निशा का जो रोल था उसे अधिकतर अभिनेत्रियों ने करने से मना कर दिया था। शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित की दिल तो पागल है, जो कि आई थी साल 1997 में, दो दशक बाद भी बॉलीवुड फैंस को पहले जितने ही एंटरटेन कर रही है, और इसी आइकॉनिक फिल्म से जहां शाहरुख और माधुरी का रोमांस जनता का फेवरेट था, वहीं करिश्मा का किरदार निशा अपने वक्त का बेहद ही मॉडर्न किरदार बनकर जनप्रिय हुआ था। और अब करिश्मा कपूर ने निशा के किरदार को लेकर एक दिलचस्प खुलासा कर दिया है, और वो ये है कि करिश्मा ने बताया है कि उस दौर में कई नामी एक्ट्रेस ये रोल निभाने से कतरा रही थी, परेशान हो रही थी, नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसमें माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन शेयर करने और उनके साथ डांस का फेस ऑफ करना था, जबकि माधुरी का डांस तो अपने आप में ही बॉलीवुड की एक आइकॉनिक चीज़ बन चुका था। उस समय हिंदी फिल्मों में ट्रेडिशनल हीरोइन का दौर था और निशा कैसे उनसे बिल्कुल अलग थी। जी हाँ, ट्रेडिशनल अभिनेत्रियों का दौर चल रहा था और ऐसे में निशा का रोल जो था वो बिल्कुल हटके था, बिल्कुल अलग था, और आखिरकार करिश्मा कपूर ने इस रोल को निभाया, और सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट रहा ये किरदार। करिश्मा कपूर का मानना था कि निशा के किरदार से उन्होंने बॉलीवुड में हीरोइन का एक स्टीरियोटाइप तोड़ा था। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि निशा के कैरेक्टर से सिनेमा जो है वो बिल्कुल बदल गया, सिनेमा की जो कहानी है उसे एक अलग रूप मिल गया था। वो हीरोइन थी लेकिन ट्रेडिशनल हीरोइन नहीं थी। निशा वो लड़की थी जिससे हीरो प्यार नहीं करता था, वो उसे ठुकरा रहा था और दर्शकों को उसका दर्द असल में नजर आ रहा था। कुछ अलग था, कुछ हटके था, है ना। करिश्मा को निशा का रोल इसी कॉम्प्लेक्स इमोशनल की वजह से पसंद आया और इसी चीज़ ने उसके किरदार को यादगार बना दिया। तो चलिए, बातें हो रही थी जिस रोल को लेकर, जिस किरदार को लेकर, जिस फिल्म को लेकर,
उसी फिल्म से जुड़ा एक प्यारा सा गीत सुनवाना चाहूंगी आप सभी श्रोताओं को। आवाज उदित नारायण और साथ लता मंगेशकर की आवाज़।

चलिए अब इस वक्त शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा की हिट जोड़ी को लेकर कर लेते हैं बात। अनुष्का ने शाहरुख के ऑपोजिट रब ने बना दी जोड़ी से अपना शानदार डेब्यू किया था। प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो रब ने बना दी जोड़ी जो कि रिलीज हुई थी साल 2008 में। इसके अलावा 2012 में हमने देखा था फिल्म जब तक है जान। इस फिल्म में इस जोड़ी को हमने दोबारा देखा था और उसके बाद फिर से 2017 और 18 में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में भी दी थी इस जोड़ी ने, जिसका नाम था जब हैरी मेट सेजल के अलावा जीरो जैसे फिल्मों में इस बेहतरीन अभिनय करने वाली जोड़ी को हमने साथ काम करते देखा था। इसके अलावा अन्य दिग्गज अभिनेत्रियों की बात मैं क्या ही करूं, जी हाँ, शाहरुख खान के साथ अलग अलग बेहतरीन अभिनेत्रियों की बात हो रही है तो ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियाँ अभी भी बाकी हैं जिनके बारे में बात करना बाकी है। शाहरुख खान ने अपने करियर में कई अन्य सुपरस्टार्स के साथ भी यादगार फिल्में की हैं तो माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनके साथ किंग खान की जोड़ी लाजवाब रही। जी हाँ, दिल तो पागल है के अलावा देवदास जैसे फिल्म में इस जोड़ी को हमने साथ काम करते देखा था। इसके अलावा प्रीति जिंटा की अगर बात करें तो साल 1998 में फिल्म आई थी दिल से। इसके अलावा 2003 और 2004 में बैक टू बैक दो फिल्में दोनों ने साथ में की थी। दिन का नाम था कल हो ना हो के अलावा वीर सारा जैसे फिल्मों में प्रीति जिंटा के साथ शाहरुख खान के बेहतरीन अभिनय को हमने देखा था। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी लेकिन सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं ना, तो चलिए गीत सुनवाऊँ आपको। इस बार आवाज़ रूप कुमार राठौड़ की।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

90 के दशक के बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म थी जिसका नाम था यस बॉस, और उसी फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ अभिजीत और अलका याग्निक की। फिर एक बार किंग खान के साथ इस फिल्म में काम किया था अभिनेत्री जूही चावला ने, और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सस्पेंस के साथ, कॉमेडी के साथ, रोमांस भरपूर तरीके से दिखाया गया था, और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें किंग खान के साथ जूही चावला के चुलबुले रिश्ते को ऑन स्क्रीन पर इतना खूबसूरत तरीके से दिखाया गया था कि आज भी इस जोड़ी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ये तो बताइए कि साल 2000 में और 2002 में एक एक फिल्में रिलीज़ हुई थी, और इन दोनों फिल्मों में फिर एक बार किंग खान के साथ हमने एक जानी मानी अभिनेत्री को देखा था। चलिए नाम मैं बताऊँ आपको, जी हाँ, मोहब्बतें और देवदास, ये दोनों फिल्में तो आपको ज़रूर याद होंगी, है ना। और जी हाँ, इन दोनों फिल्मों में किंग खान के साथ हमने देखा था जानी मानी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को, जी हाँ, फिर एक बार ऑन स्क्रीन कमाल कर दिया था इस जोड़ी ने। अच्छा, ये तो बात हुई शाहरुख खान के साथ अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की बेहतरीन जोड़ी को लेकर। अच्छा, आप मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा के साथ किंग खान की जोड़ी को तो नहीं भूल रहे हैं, है ना। जी हाँ,

बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं हम, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म में मनीषा कोइराला के साथ प्रीति जिंटा को हमने देखा था किंग खान को बेहतरीन अभिनय करते हुए। फिल्म दिल से में ये तीनों अभिनेता और अभिनेत्री हमें साथ दिखे थे। तो चलिए, बात जब हो रही है किंग खान के साथ ढेर सारी अभिनेत्रियों के ऑन स्क्रीन

8:55 यानी कि करना होगा आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त। फिर एक बार चले आए हैं कार्यक्रम के उस पड़ाव पर जहां से कहना होता है अलविदा, गुड नाइट, शब्बा खैर। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं बहुत जल्द इसी जगह इसी चैनल पर। दोबारा होंगी बहुत सी बातें सिर्फ और सिर्फ आप सभी श्रोताओं के साथ। तो फिलहाल जाने से पहले उदित नारायण सुजाता की आवाज़ में फिल्म दिल से एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।